ए यहाँ नगे चोर जहनी को आज और चिता छोटा तहुई आतो दहता सो दिन ये ना जिन गिरे या तो लाई तहे खा ए जिसे अता इस ने लो आज होता ए या खा खा ए या अखो नह तो लेता हसनी ला तो अखों दे ए या

आज ये खुश तोड़ने को ये आज ये अति दत्तवज तोड़ इन सुधर से शाहूत ये तुम जिन को ये आज तो ना दिखे दिखे ये आज लता होला तो है आरे ये ना सिंचान देगी आरे कुछ ना उल्की दिखे कुरियन शीश जरा के तिरबी 89.7 FM